0: पिताजी कहते हैं कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता।
1: हाँ, लेकिन ऐसा ही तू बोल बच्चन करता रहेगा तो एड़ी से सर तक दर्द होगा।
2: Yeah, you talking not right, then body pain from tow truck to headlight.

0: दारू पीने से लिवर खराब होता है और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं
1: होता। गड़े गड़े ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई क्रिपर हैंगिंग इनटू ट्राई फ्रूट।

0: Hello, Roshan. Could you please play my two songs? The two and the songs are "Jab Kisi Se Taraf Dil" of the movie "Pyar To Ho Na Hi Tha" and "Mohabbat Ho Na Jaye" of the movie "Kasoor." Thank you from Nirvana.
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी। लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना। जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो, वहां भी दिल कहने से डरता है। और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

0: A new, faster, smarter way to play the lotto is coming. Sizekaya is changing the game with the introduction of Shesha Codes. Now you can pick your numbers on your phone, generate your Shesha code, walk into any participating retailer, scan it, and print your ticket instantly. No slips, no long queues. Just scan, play, and win. Fast, fast. Players must be 18 years or older. Play responsibly. The National Lottery is officially operated by Sizekaya from June 1.
1: आपके गुजारे तखयलात को मजीद महकाने के लिए इबी महमूद हाजिर है इस खूबसूरत शाम का खूबसूरत तोहफा गुलदस्ता लिए हुए. थैंक यू सो मच रुंजनी रेडी एज वेल फॉर योर काइंड वर्ड्स दे फारूकी साहब, शुक्रिया भाई साहब, एंड ऑफ कोर्स यसीरा एज वेल. थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट. लेट्स लिसन टू मंजरी.